आशा जी का भी कोई जोड़ नहीं। आशा दीदी खास करके जब वर्सेटिलिटी की बात आती है, इट्स अमेजिंग द वे शी मोल्ड्स हर वॉइस फॉर द डिफरेंट कैरेक्टर शी सिंगिंग। अलग अलग जो गीत गाती हैं वो, उसमें जिस तरह का गीत होता है ऐसा लगता है कि वो खुद वही कैरेक्टर बन गई हैं। कभी कोई 16 साल की हो उनके लिए गाया तो ऐसा लगता है उनकी आवाज़ भी 16 साल की हो गई है।

ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय

हर हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय हो। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड फॉर आरती। दोज बक्तर्स फॉर प्रेजेंट फॉर लॉग्ड इन लाइक टू डे इन दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ भगवान श्री राम अ फ्लावर। लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू। श्री राम वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। एक्सेस भगवान श्री राम्स ब्लेसिंग्स।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।